रूप हो के निर्ज पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देश कुल गावे तेरा नाम है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देश कुल गावे तेरा नाम है दुख दुख सद पुन सद

करुणालय है अर्थालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार पाप हरणी

नदी पार कर रहे सन, एक अबला स्त्री उन्हां दे मगर मगर वेख्या। नौजवान छाला मारदे होए नदी पार कर रहे ने, ओ अबला स्त्री भी ओनू भी हौसला आया। है ते भावे ओ निर्बल सी, पर वेख्या इतने सारे नौजवान लंघ गए ने ते मैं नहीं लंघ सकदी। ओने भी छाल मार के ते नदी जदों मारी छाल ते ओ भी पार पै गई। बाबा जी कहंदे ने महापुरुष नाम जपण वाले संत मानो नौजवान ने इस दुनिया विचों जित के जांदे ने, पर तू अपने आप नू निर्बल समझ दे, पर उन्हां नू वेख ओ पार पै गए ते तू किवें ना पार पएगा। एक वारी तू नाम जप, संतां दी तरह तू भी मार दे छाल, उस गोरी दी तरह तेरे मन विच भी धीरज आवेगा। बाबा जी कहंदे ने जे नहीं जपेगा मेरा तू सोना ही इकट्ठा करना है, ते फिर अगे आरा तैयार है तेरे लिए जिदे नाल तेरे दो फाड़ कीते जाणगे। कहंदे ने

जब लवली आग लीलार तुझे तब नौ फरते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड थे कब हूं मिट है नीरे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ अनुगुरु नानक पातशाह अनुगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और देने कोई संकट भी आएगा तो 84 लख जून तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो अनुगुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतं दे सेवादार पातशाह हुक्म करो हजूर कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अज गुरु की संगतं की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतां वास्ते आप चक्की पी आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नू बुलाइए हजूर कह लगे नी गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे तो संजय पातशाह जी ने कड़ा प्रसाद दी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुकुम मारी तुर लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जी अस संतां की सेवा करनी तो तुसी भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत नूं भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर दे उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी नाल लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाते अज पंजवा गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दसो गुरु तुरिया जाता है सिखां दे दर्शन करो नदी तो रोज तुरदी है समुद्र नूं मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आउंदा तक लो प्यारी सार सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु दे दर्शनां नूं तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जांदी है तां गुरु आप ना उतरदे अद्धी रात दस गंगा जी सुनो ना मेरी सिखां दे प्यार वाली आवाज भावें उहनां नूं प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगतां प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बरसित की थी माता गंगा दे कन्ना विच प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार जी है ते अरदास कर रही है मेरा

अपने प्यार दी मिसाल कितनी सुंदर है मेरे दाता जी, फिल्म करे चातक की त्रिखा न उतरे हाथ न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हमको लीजियो गोद कुमारी गुरु दर्शन मैं गंगा जी कहता एडे प्यार वाले तेरे सिख हां गंगा जी आओ चल के छेती दर्शन अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हम आराम कर रही सब ने पहुंचे जथेदार बेनती की जथेदार जी धन गुरु नानक दिया संत वास्ते कड़ा प्रसादी दे जथेदार जी उठ के बैठ गए सारी संगत नावधान किया प्यारी सार संगत उठाओ कोई गुरसिख आया है गुरु ने उन्हें मन प्रेरिया है लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया कड़ा प्रसाद जी दे जा रही है उठो पहले अरदास कर सिख जो भी गुरु वालों दास मिलती है ना पहला अरदास कर ये अरदास करे तो गुरु की बख्शिश बन जाती क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है कार्य प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए क्योंकि अरदास की हो कोई कार्य नहीं गुरुओं की कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरुओं की अच्छा तेरी चंगा कार मिले जय प्रसाद बसाए सुख मंदिर किसे पे आए तो सारी संगत सावधान जथेदार ने गल पला पा के अरदास की ऐ धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसादी देख लेके आया है सिख नू नाम दान बख्शी सिख नू सिखी दान बख्शी अगर कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी अज असी प्रेमी सिख बन गए गंगा का सेवा का फल मिल अरदास करो जी साहबा ने अपने हथी सारी संगत को कड़ा प्रसाद एक गंगा जी हम जल भी चला साहबान के सोहने हथा जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें ही जपया श्री वाह जल छकाया जूठे भांडे कौन मांज रहा है माता गंगा जी वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा जो गुरु घर की सेवा तू मांजे हैं भाई साहब जी ने सिर फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहबल कर दी सारे जल सकिया भुख भी दूर से प्यास भी दूर हूं संगत आराम कर रही है तर गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का सारी संगत को पक्का कर पक्का कर दे प्यार क्या कि भरते हैं।

能利用，也知道不交钱，有人在那看着你们，都给你三十，还得包括给你三十，该了给人家的，你把钱不是他买来弄家伙，还你阿弟家老板都该了给处理的时候把起来的也包一个。अनुप्रवर्तन दे पाच्या संगत विच नगदे नगदे नगदे जथेदार दे कौन आके खोजे प्यार नाल किया जथेदार दी गुरु किया संगता दे जोड़िया वास्ते सेवादार दी लोड़ है ना दास है जथेदार सके कम और गुरु के सिखा एक ही वचन की तेन जोड़िया ना सेवादार बिठाए नहीं नहीं तू अगे बड़ी सेवा की रात रात शादी देख चुका है ठंडा जल पिलाया फिर सारी रात पक्का करता रहे तू तो कोई धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पूर्व सिख है प्यारे तेन इतने नहीं बिठाना तेन नाल लेके चलांगे ते गुरु अगे अरदास करांगे पातशाह पहली जी तेरे दर्शन करने वास्ते आया और कुछ नहीं मंगते जो कुछ सिख नू दिता जो साड़ी क्यों नहीं तेरे सबके तो साढ़े गुना बचे जाए हम कह लगी जथेदार जी मैनू इतने मजबूर किया तो प्यारी सास ने सारी संगत ने जोड़े उतार दिते संगत तो हरिमंदर साहब जा रही है तो जोड़िया का राखा कौन बैठा है प्यार आखो पहले संगत अंदर पहुंच साहब श्री गुरु साहब जी के दर्शन होए पर पंजे पातशाह के दर्शन बाबे बुढ़े ने पूछा बाबा जी पंजे पातशाह कितने हम दर्शन करिए बाबे ने किया सा संग जी पंजे पातशाह का रात दे पितली साहब गए श्री अमृतसर गुरुद्वारा पितली साहब जी दर्शन किए पुतली घर के कोल गुरुद्वारा स्थान इतिहासिक जो साखी पुतली साहब पुतली घर के नाल पिपली साहब संगत ने कहा बाबा जी पिपली साहब असी रात पिपली साहब रहे सानू तो गुरु के दर्शन नहीं हो क्योंकि संगत पहली ही दर्शन करवाते गुरु की सौ सुन के दर्शन बाबे बुद्धे देखे नहीं राती श्री हरिमंदर साहब बहुत पे ग्यारह का टाइम साहब जी ने कहा बाबे यार गुरु दिया संगत दूरों करके आई हर कुछ मिला तो उतारा किया है गुरु की संगत भुखी देते मैं कहा पातशाह हुक्म करो जाके लंगर छका दें पर पंजे पातशाह मने नहीं कह लगे बाबे यार तू तो रोज गुरु की संगत की सेवा करता है अज इला सू ले रात इतनी साथ एक दूजे के मुंह वाल वेख लग गया जथेदार ने कहा बाबा जी पंजे पातशाह तो नहीं गए सिख जरूर गया हूं एक प्रसाद भी छकया जल भी पिलाया प्रसाद भी करता रहे।

बाबा बुद्धा जी कह लगे प्यारे हो सिख नहीं सी सिखा का मालिक बाबा ये किस तरह हो सकता है। तो बाबे ने क्या पता हूं से कितने बड़े निराश एक दूजे ने मुंह वाल तक के उदासी भी जाके कह लगे बाबिया हूं तो जोड़िया का राखा बिठा गया बाबे बुढ़े दी आपको पाई और कह रही साध संगत पंजे गुरु नानक भी जोड़िया का राखा बिठा बाबा बुढ़ा जी भजे जाए मगर संगत भी भजी जाए पहुंच गए इधर मेरे पंजे पातशाह की कर रहे हैं एक जोड़ा चुक लेंगे उन्होंने साफ कर लेते हैं और धूल मथे दे किसी अगम भी खेड़े पढ़ते हैं

एक बारी सारे बोलिए धन गुरु तेग बहादुर साहब। कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आख देन।

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आख देन ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसे ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी सै मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मिलासा,

माता कहिंदी है मेरा कमान वाला पुत्र चला गया, स्त्री वाल पुट रही है पर गल बन नहीं रही। कबीर जी आख देन कितना ही पै रोन पर वो कम नहीं आउंदे, विचारा मनुख कल्ला ही जा रहे। भगत आख देन देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया, एक राजी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले।

नानक गुर खोए हम पंगा, हम होए मिल होए इक रंगा। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी पुरब असी मना रहे हैं। शहीदी पुरब असी हर साल मनाने हाँ, अते हर साल मनाते रहेंगे। मेरे दिमाग दे विच एक ए ख्याल, एक ए जिज्ञासा पैदा हुई कि गुरु महाराज जी नूं तत्तियां तवियां ते बिठाया गया, उबल दे पानी च उबालिया गया अते सड़दी रेता उन्हां दे सीस ते पाई गई। ह्यूमन फॉर्म विच एक किस तरह पॉसिबल है कोई शख्स इतनी पेन दे विच दी जा सके। वट मेड हिम गो थ्रू ऑल दैट, इट इज अनइमेजिनेबल थिंग। सो उसका जो जवाब है वो गुरु अर्जन देव जी महाराज आप देंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने इस शब्द दे विच जो विचार दी लड़ी साड़ी अपने आप नू लभण दी, अपने आप नू पहचानन दी चल रही है, वही आधार है, वही स्ट्रेंथ है कि गुरु महाराज जी इस सारे दे सारे दे विच दी गुजर गए। महाराज जी ने इस शब्द की लाइन दे विच आख्या है, नानक गुर खोए परम पंगा। कहते हैं गुरु ने मेरा जो परम सी वो तोड़ दिता। जिस तरह कल दे कीर्तना दे विच भी आख्या गया सी, जब लग टूटे ना ही मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। एज लॉन्ग वी लिव इन द इल्यूजन वी कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम पेन, फ्रॉम सफरिंग, फ्रॉम मिजरीज। एंड दिस इज बियॉन्ड अवर thinking, beyond our imagination, that someone in human form can go through this much pain. But then how Guruji took all that the answer is कि गुरु महाराज जी ने अपने आप नू पहचान लिया सी। गुरु महाराज जी ने अपने आपे नू पहचान लिया सी। गुरु महाराज जी नू ये पता लग गया सी, वो ये जानते सन कि वो कौन हन, क्योंकि अज उन्हां दा शहीदी दिन है। सैल्फ रियलाइजेशन दे उत्ते साड़ी विचार चल रही है। तो ये शब्द इतना एक प्रोफाउंड शब्द है, इतनी प्रोफाउंडनेस के नाल भरिया पिया है
ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ

जो सवाल पहला भी पूछा गया सी, इज अवर ट्रू सेल्फ और इज अवर ट्रू सेल्फ अवर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट टू थिंग्स. सो अवर कॉन्शियसनेस इज अवर ट्रू सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस. सो जो प्रैक्टिस है वो ये है टू बी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम. इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस स्टे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस बी अवेयर ऑल द टाइम दैट आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस. अगर तुसी ओ करोगे तो तुसी अपने ट्रू सेल्फ दे नाल अपना रिश्ता गंड रहे होगे. द मोर यू डू द मोर क्लोजर यू गेट. सो जितना ज्यादा अभ्यास करते जावांगे उस दे विच होर भी चीजा हम जो अगले कीर्तना च विचारिया जान दिया उतना असि अपने ट्रू सेल्फ दे नजदीक पहुंचते जावांगे. उतने ही शांत हुंदे जावांगे, उतने ही ट्रैंकुल हुंदे जावांगे, उतने ही स्टिल एंड साइलेंट हुंदे जावांगे, उतने एकांत और चुप रहने की आदत ज्यादा बन जाएगी. जो जो ये चीज बढ़ेगी एकांत प्यारी लगेगी. महाराज जी गुरु नानक साहब जी की बाणी की एक तुक है, रहे एकांत एको मन वसया आसा महे निराशो. कहते वो सज्जन फिर एकांत विच रहिंदे हैं ज्यादा क्योंकि अपने सेल्फ नाल रहिंदे हैं. एकांत का मतलब यह नहीं कि कल्ले हुंदे हैं, वो हुंदे हैं परमात्मा दे नाल, वो हुंदे हैं अपने अंदर उस जोत दे नाल. जो उस जोत दे नाल जुड़िया पिया उहदा कदों दिल करदा बाहर निकलूं, टाइम वेस्ट करन ते अपने आप नूं डिस्टर्ब करन, उसनूं तां मुश्किल बन जांदी है अगर उसनूं अपनी उस जोत नालों टुट के होर किसे दे नाल कुछ बैठना पै जाए. सो रहे एकांत एको मन वसिया आसा माहे निराशो, उसकी यह अवस्था हो जाती है. गुरु चुप की खिमा नंद साहब का पाठ सारे राम.